अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: வானிலை எப்படி இருந்தாலும் நம்ம வானொலியில ஹாய் ஸ்நேகித நிகழ்ச்சி கேட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்க நம்ம நேயர்களுக்கு பாடகி மகாலட்சுமி ஐயர் அவர்களை பத்தி தான் சொல்லிட்டு வர. 2000ல் வெளியான அலைபாயுதே திரைப்படத்துல யாரோ யாரோடி பாடல பாடியிருப்பாங்க பாடகி மகாலட்சுமி ஐயர். இதே ஆண்டுல வெளியான ஹேராம் திரைப்படத்துல

0: ஒன்றை நம்புங்கள்.
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान सहित आर्थिक चुनौतियों से निपटने के की आवश्यकता पर बल दिया. विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बेल्जियम में आयोजित तीसरे भारत यूरोपीय संघ व्यापार सम्मेलन में भाग लिया. सरकार ने ईंधन निर्यात की समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्लू ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि एक समृद्ध जैव अर्थव्यवस्था देश की स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी, वैक्सीन विकास को बढ़ावा देगी. सर्वोच्च न्यायालय ने आज CBSE पाठ्यक्रम के अंतर्गत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई. कहा, इससे छात्रों पर तनाव बढ़ेगा. भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए आज विस्तृत अनुष्ठान की तैयारियां की गई हैं और व्यापक सुरक्षा तथा भीड़ प्रबंधन के इंतजाम भी किए गए हैं. अमरीका ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए. म्यांमार में रोहिंग्यों के अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को ले जा रही दो नौकाओं के बंगाल की खाड़ी में डूबने से 500 से अधिक यात्रियों के मारे जाने की आशंका है. मौसम विभाग ने आज ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है. अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा. दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया. फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा. भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा. तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार. बने रहिए हमारे साथ.

0: नंदन वंदन अभिनंदन नमस्कार सुस्वागत आप सभी का कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे सोल्जर, एक ऐसे सिपाही से जिसने अपनी कर्तव्य निष्ठा से अपने लिए, अपने देश के लिए हमेशा परचम लहराया है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह सहस्त्र सीमा बल से। सर्वप्रथम हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे आज के मेहमान हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह जी का। भागिंदर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू मैम। जय हिंद मैम।
0: जी जय हिंद। और आप जैसे सोल्जर से सिपाहियों से जब भी हम मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा सीना जो है वो गर्व से फूल जाता है और हम ये महसूस करते हैं जैसे हम भी ना कहीं देश के प्रति अपनी कृतज्ञता यहाँ अपने कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञापित कर रहे हैं। और आपकी जो मंद मुस्कान है, प्यारी सी मुस्कान है, वो इस बात का सबूत है कि 20 सालों से आपने जो अपनी सेवाएं दी हैं सहस्त्र सीमा बल के माध्यम से देश के प्रति अत्यंत गौरवशाली रही होंगी। और आज हम अपने सभी श्रोताओं से साझा करना चाहते हैं कि 2005 में भागिंदर सिंह जी ने सहस्त्र सीमा बल में अपना पदार्पण कर अपने आप को वहां दर्ज कर अपने लिए एक मुकाम हासिल किया और इस मुकाम को, इस यात्रा वित्रांत को इन्हीं के माध्यम आज हम सुनेंगे। तो आपका हम पुनः स्वागत करना चाहते हैं भागिंदर जी, और आप ही से जानना चाहते हैं कि ये जो 20 सालों की जो यात्रा है कितनी सुखद रही है।
1: जी मैम। जय हिंद मैम।
0: जी जय हिंद।
1: सबसे पहले तो मैं एफएम रेनबो को अपनी बल की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो कि एफएम रेनबो के सभी कर्मियों को। मेरा जीवन बहुत सरल है मैम। मैं अपने गांव से रामपुर भांगर से बिलोंग करता हूं, उत्तर प्रदेश, गौतम बुद्ध नगर जो कि जेवर के पास है। मेरा जीवन जो है प्राथमिक विद्यालय से शुरू हुआ, सरकारी स्कूल से, वहीं से मेरा जीवन स्टार्ट हुआ है, वहीं से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। मेरे पापा जी जो है एक किसान हैं, मध्यम परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। हम दो भाई दो बहनें हैं और मेरी पत्नी दो बच्चे।
0: वाह क्या बात है, सच में आपका जीवन बहुत ज़्यादा सरल है। पर यही कहूँगी कि आपकी सोच और आपकी सोच में जो आपके कर्म हैं वो सर्वोपरि हैं और आपकी जो सोच है यही आपको सहस्त्र सीमा बल की ओर ले गई। आप सर्वप्रथम हमें ये बताएं कि क्या वो ऐसी बात थी जिसने आपको ये प्रेरणा दी कि आपको भी फौज में भर्ती होना चाहिए।
1: मैं बताना चाहूँगा, मेरे गाँव में पुराने समय से ही काफ़ी फौजी हैं। छोटा सा गांव है पर फौज में काफ़ी जो मात्रा में जो लोग हैं, जिसमें कि मेरे परिवार में से ही मेरे दादाजी, बाबा, दो ताऊजी और मेरे जो है ताऊजी के चाचा जी के जो लड़के हैं, हम पांच भाई हैं। पांचों में से चार जो है अपने जो है फौज में हैं।
0: वाह क्या बात है। तो कहीं ना कहीं वो परिवेश था, यानी कि आपको कहीं ना कहीं ये अनुभूति पहले से हो गई थी कि आपके लिए वो रास्ता कौन सा है।
1: जी मैम बिल्कुल।

0: ये जो है मेरे को प्रेरणा जो मिली है मेरे जो है ताऊ के लड़के थे उनसे, मेरे ताऊ जी से और गांव के जो फौजियों से उनसे मिली है मैम। मेरे को भी दिल था कि मैं भी जो है ये जो कैमोफ्लाइज वर्दी पहन के आते हैं जो ये मैं पहनूं और देश की सेवा करूं।
1: वाह क्या बात है। तो निश्चित रूप से आप लगातार किस्से कहानियां सुनते होंगे, और उन किस्से कहानियों ने कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि हमारे मन में एक सपनों का सागर बनने लगता है, तो सपनों के सागर की ओर आकर्षित आप उन किस्से कहानियों से जरूर हुए होंगे।
0: जी मैम, मेरे जो ताऊ जी थे वो फौज में थे, उन्होंने पाकिस्तान की लड़ाई देखी है तो पाकिस्तान के किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे काफ़ी मात्रा में। जब जो 1962 में युद्ध हुआ था मैम, तो उसमें से जो है काफ़ी मात्रा में जो है हिंदुस्तान ने उनके जो सैनिक बंदी बनाए थे और लड़ाई जीती है, काफ़ी बार उन्होंने अपने बल का नाम रोशन किया है हमारे जो ताऊ जी थे, तो उनसे बहुत प्रेरणा मिली मैम।
1: जी बहुत बढ़िया। तो जब आप वो किस्से कहानियां सुनते थे तो क्या रग रग में, कहते हैं ना कि आपके जो आपका जो लहू होता है उसका संचार और भी ज्यादा तेज हो जाता है, कैसा
0: जी
1: होता था आपके साथ?
0: जी मैम, जैसे ही मैं किस्से कहानियाँ सुनता था तो मेरे अंदर एक अलग ही जोश होता था। सुबह को उठना, 4 बजे उठना, एक्सरसाइज करना, दौड़ भाग करना कि बस अब फौज में ही जाना है, बस और किसी की तैयारी नहीं थी मैम, सिर्फ ओनली फौज।
1: वाह क्या बात है। तो उस वक्त आपकी उम्र बहुत कम रही होगी।
0: जी मैम, मेरी उम्र जो है मैं 8वीं 7वीं से ही मैम जो है मैं फौज की तैयारी में लगा हुआ था। मेरा जो है गेम था फिजिकल, मेरे पहले से ही टफ था मैम, मैं कुश्ती और वेट लिफ्टिंग का बहुत शौकीन था मैम।
1: जी, तो हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद फिर आप फौज में गए,
0: जी मैम,
1: तो क्या प्रक्रिया रही, कैसे गए?
0: मैं जैसे किस्से कहानी सुनता था तो मेरी जो प्रक्रिया मेरे पापा जी से स्टार्ट होती है। मेरे पापा जी बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते थे, उनसे बोल देना तो मेरे को 3 बजे उठना है तो उनको यार रात में 4 बजे उठना पड़े, 5 बार उठना पड़े, 6 बार, वो मेरे को सिर्फ उसी टाइम पे जगाते थे मैम जब मैं उनसे बोलता था।
1: वाह क्या बात है। तो निश्चित रूप से जब आप सेलेक्ट हुए होंगे तो पिताजी तो बहुत खुश हुए होंगे, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि आपके ताऊ जी के बच्चे, ताऊ जी आपके
0: जी
1: बाबा
0: जी
1: सब फौज में रहे, लेकिन
0: जी
1: आप चार भाई बहन
0: जी
1: इनमें से कोई फौज में नहीं
0: जी
1: था। पिताजी खुद जो है उन्होंने देश का दूसरा कार्यभार संभाल रखा है, वो कहते हैं कि कृषि जो है हमारे जीवन का आधारभूत स्तंभ है,
0: जी
1: तो वो वहाँ मिट्टी से जुड़े हुए और आप फिर मिट्टी से फिर जुड़ गए
0: फिर
1: देश के
0: से
1: प्रति।
0: जी
1: तो उस वक्त उनके अंदर क्या चल रहा था कि बेटा अब सशस्त्र सीमा बल यहाँ अपनी सेवाएं देकर देश के प्रति अपने कर्तव्य निष्ठा निभाएगा?
0: मैम, मेरे परिवार में से किसी ना किसी घर में से 2 या 3, किसी के 2 लड़के हैं, 2 भी भर्ती उसी में सेना में, 3 है 3 भी, सिर्फ एक मेरा परिवार ऐसा था जो कि सेना में भर्ती नहीं था। उसके बावजूद मैम मेरे पापा जी को जब ऐसा लगा कि ये सेना में भर्ती हुआ है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे परिवार में खुशी की एक लहर दौड़ गई मैम, घर में, परिवार में, गांव में, तो उनको ऐसा लगा कि मेरे परिवार में से भी कुछ है। और जब मैं आ रहा था तो बोले बेटे कभी भी फौज में बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है, क्योंकि मैं सुनता भी रहता था कि इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है, लोग जो है छोड़ना करते हैं, ऐसा मत करना जो है। तो मैंने पापा जी को आश्वासन दिया, मैं कह ऐसा कभी नहीं होगा,
1: वाह क्या
0: मेरे को
1: बात
0: देश
1: है,
0: से बहुत प्रेम है, मैं कभी नहीं आऊँगा।
1: वाह क्या बात है। हमारा जो वैल्यू सिस्टम है ना, फैमिली सिस्टम, इसकी खास बात यही है।
0: जी
1: जिस तरह से बेटियों को जब ब्याह जाता है कहा जाता है कि जो जहाँ तुम जा रही हो वही तुम्हारा घर है, इसी प्रकार आपके पिताजी ने भी आपसे कहा कि
0: जी
1: वापस लौट कर मत आना,
0: जी
1: लेकिन शिद्दत के साथ ट्रेनिंग
0: दे
1: अपनी, तालीम अपनी पूरी हासिल करना। तो फिर बताइए कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ हुई, कितने अंतराल की थी और कितनी जटिल, कितनी मुश्किल थी?
0: मैडम, मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 2005 में दिसंबर 15 को, तो मेरी ट्रेनिंग का ज्वाइनिंग मैंने दिल्ली 25 बटालियन घटोरनी में करी थी 15 दिसंबर 2005 को। तो उसके बाद मेरी ट्रेनिंग पीनातोली उत्तराखंड में हुई मैम, तो 1 साल की ट्रेनिंग थी। 1 साल ट्रेनिंग के बाद मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी 18 बटालियन बीरपुर बिहार में।
1: वाह क्या बात है। और जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो कैसा लगता है, वो पल याद आते हैं, क्योंकि जब हम युवा होते हैं बहुत उमंग होती है, लेकिन अगर एक सिपाही की बात की जाए, एक सैनिक की बात की जाए, तो उसका जोश ना उतना का उतना रहता है। हम जितने भी ऑफिसर से मिलते हैं वो यही कहते हैं कि वो अपनी जिंदगी को दोबारा

0: क्या जीना चाहते हैं। तो जो 20 सालों का जो समय रहा है जिसमें आप अपना योगदान दिया है और अभी भी कर्तव्य निष्ठा के साथ कर्मठ सैनिक के रूप में आप कार्य कर रहे हैं, तो अभी भी क्या है महसूस होता है कि काश वो पल दोबारा से आ जाए, दोबारा से जिए उनको।
1: मैम, बचपन के पल वापस तो नहीं आते, पर
0: जी
1: बहुत यादें जुड़ी रहती हैं। और काफ़ी मात्रा में मैं जो आपको बताना चाहूँगा, मेरी यादें काफ़ी जो है ऐसे काम करें जो मेरे को याद आते हैं।
0: वाह क्या बात है। निश्चित रूप से आपने जो भी कार्य किए हैं इन 20 सालों में और जो आगे भी करेंगे काबिले तारीफ रहेंगे, लेकिन उनके पीछे की सोच सिर्फ देश प्रेम है ना,
1: जी मैम,
0: और हमेशा जहन में ये चलता रहता हो कि देश के प्रति हमें कार्य करना है और देश का झंडा यूं ही लहराता रहे इसके लिए हमेशा हमें कार्य करना
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैम।
0: तो जैसा कि इन्होंने खुद कहा हेड कांस्टेबल भागेंद्र सिंह जी ने कि बहुत सी यादें इनकी जुड़ी हुई हैं सशस्त्र सीमा बल से, बहुत सारी बटालियंस में आपने अपना योगदान दिया होगा, जगह जगह आपको डिप्लॉय किया गया होगा, उनसे जुड़ी हुई सारी किस्से कहानियां आज इनके माध्यम से हम जरूर सुनेंगे।

आप सभी का पुनः स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर्स। और आज के इस अंक में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह जी सहस्त्र सीमा बल से। और इनकी कहानी बहुत रोचक है जिसे इन्होंने खुद ही बताया कि किस तरह से इनका बचपन इतना शानदार रहा है। जिसका बचपन इतना शानदार होगा उसका वर्तमान, और आगे चल के कहते हैं कि हमारा जो वर्तमान है वो हमारा भविष्य बनाता है। तो भविष्य तो सुखद ही होगा निश्चित रूप से, और सुखद उस व्यक्ति का ज़रूर होता है जिसे वो प्राप्त हो जाए जिसकी वो कामना करता है। क्योंकि जिसकी हम कामना करते हैं उसके लिए मेहनत भी बहुत करते हैं भागिंदर जी। क्यों, सच कहा ना। और

0: के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि आपने मेहनत भी की, बहुत वर्जिश की, बहुत मेहनत करी और ईश्वर की कृपा से आपको वो प्राप्त हुआ जिसकी कहानियाँ, जिससे
1: जी
0: जुड़ी हुई कहानियाँ आप बचपन से सुनते आ रहे थे।
1: जी मैम
0: जी आप वर्तमान में 25वीं बटालियन सशस्त्र सीमा बल से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा कौन कौन सी बटालियन से आप जुड़े रहे और हर बटालियन की कुछ ना कुछ विशेषताएं रही होंगी, अलग अलग तरह के कार्यभार आपको दिए गए होंगे, वो सब बताएं हमें।
1: जी मैम, मैं सबसे पहले पोस्टिंग ट्रेनिंग के बाद 18 बटालियन वीरपुर बिहार में हुई। उसके बाद मैं फोर्स हेडक्वार्टर जो है डीजी टीम से कुश्ती के लिए क्लोज किया गया, तो मेरे को यहाँ पे गेम में काफ़ी दिन गेम में रहा। उसके बाद मेरे को जो है डेप्टेशन एनएजी के लिए डेप्टेशन हुआ, तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। एनएजी करने के बाद वापस मैं 18 बटालियन में आया। 18 बटालियन के बाद 35 बटालियन में आया, जिसमें कि जो है झारखंड में थी।
0: वाह क्या बात है। अच्छा ये बताइए, क्योंकि आपको तो जैसा कि मैंने स्वयं अभी कहा, आपने पहले कहा कि वेट लिफ्टिंग में आपको सम्मान प्राप्त हुआ, तो जो आप वर्जिश करते रहे, सेनाओं में रहते रहते आप करते रहे और साथ ही साथ आप खेलों के प्रति भी आपका रुझान, जैसे कि वेट लिफ्टिंग में आपको गोल्ड मेडल भी मिला है, तो ये साथ साथ आप करते रहे और कितना समय निकाल पाते?
1: मैम मैं जो है जब मेरे से ड्यूटी से समय मिलता था तो मैं अपनी प्रैक्टिस जारी रखता था। तो उसके बाद मेरे को मेरे बल ने मेरे को मौका दिया, मेरे को हेडक्वार्टर बुलाया और मेरे को टीम में शामिल किया। कंपटीशन करके मैं वहाँ पे आया, तो मैंने अपनी एसएसबी में अपने बल में गोल्ड मेडल प्राप्त किया मैम।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक प्रश्न जो है मैं भूल रही हूँ, मुझे लगता है कि उस प्रश्न को यहाँ ज़रूर पूछा जाना चाहिए, क्योंकि 20 सालों का यह सफ़र यादगार रहा है और आगे भी रहेगा। आपसे वो लोग मिलते होंगे ज़रूर जो आपके साथी होंगे और कहीं ना कहीं कहते होंगे, कुछ ये कहते होंगे कि तुमसे प्रेरणा मिली और कुछ ये कहते होंगे कि काश हम भी तुम जैसे बन पाए, ऐसा होता है?
1: हाँ मैम, काफ़ी लोग मेरे जो मित्र हैं बल्कि काफ़ी मिलते हैं और बहुत मतलब मेरा साथ देते हैं। बोलते हैं यार आपने जीवन में कड़ी मेहनत की है और आप इस लायक थे, काश हम भी आपके साथ होते, और बोलते हैं कि और वो होते उस टीम का हिस्सा तो हो सकता है मेरे से भी अच्छा करते हो।
0: वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। अच्छा वो लोग जो सीमा में यानी कि सशस्त्र सीमा बल में आने से पहले, आपके वहाँ जुड़ने से पहले वो साथी,
1: जी
0: वो भी तो आपसे प्रभावित हुए होंगे या होते होंगे, कहते होंगे, कुछ साथी ऐसे भी होंगे कि जो आज जो खुद सेनाओं में हैं, कुछ खुद फौज में हैं, तो वो उन दोस्तों की क्या प्रतिक्रिया थी और क्या ऐसा समा था उस वक्त जब आप तैयारी कर रहे थे, आपके साथ में बहुत से लोग और तैयारियां कर रहे होते?
1: मैम ज़्यादातर जो है हमारे गांव में से काफ़ी लोग होते हैं, लास्ट में जैसे कि मैं बताना चाहूँगा सभी भर्ती हो लेते, लास्ट में मैं हुआ था, तो जितने भी तैयारी करते थे ज़्यादातर लोग सेना में भर्ती हो गए, और कुछ थे जो हमारे साथी थे जो कि नहीं हो पाए। जैसे कि मेरा एक मित्र था योगेश शर्मा, वो जो है कोशिश भी किया पर भर्ती नहीं हो पाया।
0: तो उनके मन में मलाल रहा होगा कि काश हम भी तुम जैसे बन पाते, काश।
1: हाँ मैडम बिल्कुल बोलते हैं।
0: अच्छा कुछ ऐसे भी होंगे ये बोलते होंगे कि तुम्हारी वजह से हम आज वहां हैं, हम भी आज सेनाओं का हिस्सा हैं, हम भी अपना गर्व से सीना चौड़ा करके चलते हैं, कुछ प्रेरणा स्रोत?
1: मैम ऐसा साथ में बोलते थे कि क्यों हमारे जो साथी थे जो हमारे साथ दौड़ते भागते थे वो एक दूसरे का एहसान जरूर मानते हैं, और कुछ हमारे जो सीनियर थे जो फौज में थे वो स्टाफ वॉच लेके मैम सभी को दौड़ाते थे, तो वो यादें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि उनमें हमारे जो लगने में सिर्फ हमारा ही मेहनत नहीं, हमारे गांव के फौजियों का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने भी हम पे काफ़ी मेहनत करवाया। स्टाफ वॉच लेके खड़े होना, फौज में क्या होता है, भर्ती की तैयारी कैसे की जाती है, ये सब कुछ बहुत मतलब
0: सुखद रहा है मतलब।
1: जी जी।
0: अच्छा मैंने तो ये भी सुना है कि आप भी तैयारियां करवाते थे।
1: जी मैं जो शुरू से ही जो कुश्ती में और गेम में था, तो जो मेरे कोच थे नेपाल पहलवान, तो उनसे मैं कोचिंग लेता था, तो उसी प्रकार की मैं जो एक्सरसाइज वगैरह अखाड़े में इसमें करवाता था, तो उस प्रकार से मैं दौड़ भाग बताता था इस प्रकार से करना है, डंडे से मारनी।

0: है, बैंड ऐसे करना है, सेटअप ऐसे लगाने, तो उस प्रकार की मैं जो है उनको ट्रेनिंग देता था मैम।
1: तो जो आप ट्रेनिंग देते थे उसके उपरांत जब उनके नतीजे आते थे निकल कर, तो कैसा महसूस होता था? और कितने दोस्तों को आपने ट्रेनिंग दी? और आपकी नियुक्ति कब हुई?
0: मेरी नियुक्ति 2005 में हुई थी
1: जी,
0: मैम
1: ये तो आपने मुझे बताया।
0: जी,
1: तो क्या उन दोस्तों से पहले नियुक्ति हो गई थी, उनके बाद हुई?
0: उनके बाद में हुई मैम मेरी,
1: अच्छा,
0: सबसे बाद में मेरी नियुक्ति हुई थी मैम। और जो है मैंने काफ़ी और ज़्यादा लगन से मेहनत करी, मेरे साथ के सभी लग गए, जिनको मैं
1: सिखाता था।
0: सिखाता था वो लग गए, तो मेरे को और भी ज़्यादा लगन हुई मैम, मैंने और ज़्यादा कड़ी मेहनत करी और फिर जो है अपनी SSB बल में भर्ती
1: तो
0: हुआ
1: आपने अपने साथ साथ सबकी नैया पार लगाई,
0: जी।
1: यानी कि मास्टर जी।
0: नहीं मैं नैया तो नहीं खैर ये बोल सकता,
1: हाँ,
0: जो हमारे उनका मेहनत थी उनका फल था मिला
1: बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत का फल जरूर व्यक्ति को मिलता है अगर उसमें ये भावना हो कि उसे प्राप्त करना है। और कहते हैं कि फौज तो वैसे भी आपको लक्ष्य को प्राप्त करना सिखाता है,
0: जी मैम
1: अपने आप से लड़ना सिखाता है। और कहते हैं जब अपने आप से लड़ जाते हैं तो आप विजयी तो वहीं हो जाते हैं, और जब देश प्रेम की भावना हो तो बात ही कुछ और होती है।
0: बिल्कुल
1: तो आज हमारे साथ भागेंद्र जी हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद, जो हेड कांस्टेबल हैं सशस्त्र सीमा बल में। इनके काम बहुत बड़े बड़े हैं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। भले ही इस बात का श्रेय ये ना लें, लेकिन हमारे लिए तो हम यही कहेंगे कि हर एक सैनिक, हर एक ऑफिसर जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से देश प्रेम मन में लिए,

सहस्त्र सीमा बल में, इनके काम बहुत बड़े बड़े हैं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, भले ही इस बात का श्रेय ना लें, लेकिन हमारे लिए तो हम यही कहेंगे कि हर एक सैनिक, हर एक ऑफिसर जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से देश प्रेम मन में लिए, हमारे लिए दिन रात का चैन खोकर अपने प्राणों का भी ध्यान न रखते हुए अगर हमारे लिए मुस्तैद है, तो हम यही कहेंगे कि आप जैसा कोई भी नहीं। तो इन मिट्टी के रखवालों को हमारी ओर से सलाम, सलाम और सलाम। और जैसे कि मैंने कहा था कि भागेंद्र जी का तो जुड़ाव मिट्टी से बहुत गहरा है, क्योंकि पिताजी ने मिट्टी में से फूल उगना सिखाया है और इन्होंने उसी मिट्टी को तिलक बनाया है।

0: भी दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपके मन में कोई भी बात हो, आप कोई भी बात साझा करना चाहें, भागिंदर सिंह जी कोई कोई संदेश देना चाहें, तो आप 9868107070 इस नंबर पर हमें संदेश भेज सकते हैं। फिलहाल हमारे पास बहुत सी बातें हैं भागिंदर सिंह जी से जानने के लिए, क्योंकि जैसा कि हम बार बार ही कह रहे हैं कि 20 सालों का यह सफ़र बहुत यादगार इनके लिए रहा है। बहुत सी बातें हैं, बहुत सी किस्से हैं, बहुत सी कहानियाँ इनके जहन में ज़रूर होंगी जो साझा करना चाहेंगे हमारे साथ। लेकिन आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं यहाँ जानना चाहती हूँ।
1: जी
0: 10 जुलाई 2020 क्या हुआ था? क्या
1: नहीं,
0: हुआ था जिसके बाद आप कि चेहरे की जो मुस्कान मुझे बता रही है कि कुछ ऐसा जरूर हुआ था जिसने आज आपको और भी गौरवान्वित महसूस करवाया, और आप उस बात का जिक्र बार बार करना चाहते हैं। क्या हुआ था 10 जुलाई 2020 को?
1: मैं आपको मैं बताना चाहूँगा। 10 जुलाई 2020 को मैं झारखंड में पोस्टिंग था, 35 BN में। एक मैम, हमारी जो झारखंड में एक स्मॉल एक्शन टीम हुआ करती थी, उसका गठन जो है संजय सर ने किया था, IPS संजय सर ने, और हमारे बल ने, SSB ने उसको बहुत सहारा था। हमारे जो बल की जो सबसे बड़ी नीम है, हमारे DG साहब हैं, DG साहब ने जो है अपनी SSB को जो है कई बार मौका दिया है ऑपरेशन करने का। और उसका तो ये ऐसा था मैम, जो है झारखंड में जब हम गए थे तो झारखंड में माओवादी बहुत चरम सीमा पे थे, जो कि दुमका, पाकुड़, देवघर, ये जो है 4-5 जो ज़िले थे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। आम पब्लिक बहुत परेशान थी, लेवी वसूलना, आम पब्लिक को परेशान करना, फौज पर अटैक करना, ये काफ़ी जो है गतिविधियाँ होती थी वहाँ। तो ये 32 बटालियन थी जिसके जो है सर थे दीपक सर, वो भी थे उस ऑपरेशन में। संजय सर थे, IPS IG संजय सर, और DIG सुमित जोशी सर थे, मनोरंजन पांडे कमांडेंट सर थे, और दीपक सर कमांडेंट, और ललित साहा DC डिप्टी कमांडेंट, नरपत सर डिप्टी कमांडेंट, ये काफ़ी जो है हमारी टीम के हिस्से थे, जो कि उनके द्वारा जो है ये ऑपरेशन किया गया। और इस टीम में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो टीम का गठन किया था वो संजय सर ने किया था, कि कोई एक ऐसी टीम हो जिसे मैम इनका जो है नक्सलियों का सफाया कराया जाए। तो उस टीम का नाम रखा गया सेट टीम, स्मॉल एक्शन टीम। तो स्मॉल एक्शन टीम जब उसका नाम रखा गया तो उसकी ट्रेनिंग भी बहुत हार्ड जो है करवाई गई, हर एक प्रकार के उसमें जो है ट्रेनिंग में, जो कि अच्छे बहुत अच्छे लेवल पे ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है, वो सब कुछ करा मैं।
0: जी अच्छा, फिर ये बताइए कि जब आपका सिलेक्शन हुआ, चयनित हुए, क्योंकि आपकी टीम में मतलब आपकी जो बटालियन थी उसमें बहुत सारे लोग थे, लेकिन आपका एक मेंबर के रूप में चयनित होना कितना गौरवशाली था उस वक्त? कैसा महसूस हुआ कि मेरा चयन हुआ है, मैं टीम का मेंबर हूँ? कैसा कैसा लगा आपको?
1: जी मैम, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा और खुशी भी होगी मैम कि इसके बारे में मैं बताऊँ। तो IG जो IPS IG संजय सर थे वो, और अपने जो है DIG सुमित जोशी, मनोरंजन कमांडेंट सर, ये अपना ललित सर 2IC, नरपत सर DC, ये सभी आते थे, और उनकी सभी लोगों की ट्रेनिंग होती थी वहाँ, उनका टेस्ट लिया जाता था, उसके बाद उनका सिलेक्शन किया जाता था। तो मेरा जब सिलेक्शन किया था टीम में हमारे सर ने, सुमित जोशी सर ने, तो उन्होंने एक ही बात बोली थी कि ये जो है

आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हवलदार भागिंदर सिंह जी सहस्त्र सीमा बल से। और हमारे लिए बहुत ही सुखद पल है ये, क्योंकि आप जैसे सिपाहियों से, वीरों से जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं गौरवान्वित हम महसूस करते हैं कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां हर सिपाही अपने हाथ में अपने जीवन को लेकर चलता है, बिना सोचे समझे, बिना कुछ कहे, बस अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है और देश सेवा में अपने आप को समर्पित कर देश के प्रति अपने प्रेम को यहां दर्शाता है। आप सभी

0: स्ट्रक्चर भी अच्छा है और जो है लीडर भी अच्छा बनेगा, तो इसको जो है एज ए स्ट्रक्चर और टीम का CHM बना दिया जाए।
1: वाह,
0: दो नंबर टीम का मैम एक प्रदीप कुमार था जो मेरा मित्र था, वो दो नंबर टीम का मैं CHM था, एक नंबर टीम का CHM वो था।
1: वाह, बहुत खुशी हुई होगी। किस किस के साथ साझा किया कि मैं मेंबर हूँ? किसी के साथ साझा किया था उस वक्त?
0: नहीं मैम ये साझा तो
1: नहीं
0: ऐसी
1: किया
0: चीजें नहीं
1: जाता उस
0: किया
1: वक्त,
0: जाता,
1: ऑपरेशंस के दौरान नहीं किया
0: मगर
1: जाता।
0: जो है टीम जो है एक ही माइंड के, एक माइंड सेट के, सभी की सोच एक सी हो, ऐसी टीम मिलना बड़ा मुश्किल
1: मुश्किल
0: है।
1: होता है।
0: जो कि हमारे बल ने ऐसी टीम को ढूंढा और सबको एकत्र किया और टीम का हिस्सा बनाया। उसमें ऐसा मैम कभी हमें फील नहीं हुआ कि हमारे ऑफिसर्स जो हैं हमारे प्रति कुछ ऐसा हो। एक जगह रहना, एक जगह खाना, कभी ऐसा नहीं भाई की तरह रखना, बिल्कुल कोई भी वो नहीं। जो ट्रेनिंग एक जवान करता है वही एक ऑफिसर करता है, बराबर। जितना वर्क वो करता है उतना ही वर्क, कोई ट्रेनिंग में कोई कैसी भी जो भाईबंदी नहीं होती मैम।
1: बिल्कुल, एक टीम की तरह काम
0: और
1: करते हैं।
0: जी जिसमें कि मैम जो है IG जो संजय सर और DIG सुमित जोशी सर ये रहते थे, तो उसमें कोई भाईबंदी की कोई गुंजाइश नहीं। वो कोई भी हो अपना सात सात दिन की मैम हमारी जो है वहाँ पे जंगल ट्रेनिंग भी होती है, तो उसमें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें मैं बता भी नहीं पाऊँगा कि
1: जी
0: अंदरूनी
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जी
1: अंदरूनी बातें हैं।
0: जी
1: और जब हम कहते हैं, जब आपकी फोर्स की बात होती है, तो बहुत सारे ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जिनको
0: जी
1: हम उनके सिर्फ हम उनका सिर्फ निर्णय हमारे सामने आता है कि विजयी रहे हैं और विजयी प्राप्ति प्राप्ति हुई है, लेकिन ऑपरेशंस की बात यहाँ नहीं कर सकते। निश्चित रूप से हम भी यही चाहेंगे कि
0: जी
1: आप अपनी फोर्सेस की या अपने बल की गरिमा को बनाए रखें। अब बात आती है कि 2024 में राष्ट्रपति द्वारा आपको पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया गया इस एंटी माओवेस्ट ऑपरेशन के लिए। उस वक्त तो लगा होगा कि जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि सम्मान प्राप्त करना गौरव की बात तो होती है, लेकिन ये लगता है कि जब मेरा चयन किया गया, हमारी पूरी टीम विजय हुई है, सम्मान मिल रहा है, लेकिन जिम्मेदारी अब बढ़ गई है। उस वक्त क्या सोचा आपने?
0: मैम देखो बहुत मेरे को खुशी भी बहुत ज़्यादा हुई और एक जिम्मेवारी भी बढ़ गई। जैसे ऐसा होता है ना मैम, जैसे कि आम का पेड़ होता है, जब आम आते हैं ना तो वो झुक जाता है, तो उसी प्रकार से मेरे को जितने भी मेडल लगे, जितनी DG-DIS मिली हैं, उसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। जब मैं डिसिप्लिन में रहूँगा तो हमारे जवान भी डिसिप्लिन में रहेंगे, तो जिम्मेवारी तो कहीं ना कहीं बढ़ती है मैम।
1: बिल्कुल, सम्मान हर्ष देते हैं, सुखद अनुभूति कराते
0: जी
1: हैं, गौरव महसूस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब इन कंधों को और चौड़ा करके चलना है, और जैसा कि आपने कहा कि डिसिप्लिन में रहना है और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है। आपने एक बात और कही कि बहुत सारे सम्मान और आपको प्राप्त हुए हैं, ये भी बताएं हमें, क्योंकि हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, जिस वक्त आपको सुन रहे होंगे,
0: जी मैम
1: आतुर हो रहे होंगे जानने के लिए, वो और कौन से सम्मान हैं
0: जी मैम
1: जिनसे नवाजा गया आपको?
0: जी मैम मेरे को पुलिस मेडल मिला है मैम, और आंतरिक सुरक्षा मेडल मिला है। DG साहब की तरफ से मेरे को सिल्वर DG-DIS मिली है, गोल्डन DG-DIS 1 स्टार, गोल्डन DG-DIS 2 स्टार, और प्रशंसा पत्र हमारे DG साहब ने, IG साहब ने, DIG साहब ने, कमांडेंट सर ने, काफ़ी मात्रा में मेरे को जो है प्रशंसा पत्र भी मिले, काफ़ी जो है मेरे को नगद इनाम भी दिया गया है मैम।
1: वाह, क्या
0: जी
1: बात है। और आपके जो पदक हैं इस वक्त आपने धारण किए हुए
0: जी
1: हैं ठीक अपने वक्ष पर, तो वो जिस तरह से चमक रहे हैं ना, उनकी दीप्ति,
0: जी
1: उनकी
0: मैम
1: चमक आपके चेहरे पर भी नजर आ रही है, और
0: जी
1: ये
0: जी
1: सच्चे देश प्रेम की गाथा है। शायद आप अपनी आंखों से ना देख पाए, लेकिन मेरे शब्दों के माध्यम से आप उस चमक को, उस दीप्ति को महसूस कर सकते हैं जब किसी सिपाही को, किसी सोल्जर को सम्मान दिया जाता है। और यकीन मानिए, ये सम्मान यूं ही अर्जित नहीं किया जाता, इसके लिए कर्तव्य निष्ठा चाहिए, देश प्रेम चाहिए, और बहुत सारी मेहनत चाहिए। और वो मेहनत और वो देश प्रेम आपके चेहरे पर आपके पदकों के साथ एक साथ खिल रही है। हम बहुत गौरवशाली महसूस कर रहे हैं कि आप

0: जैसे व्यक्ति के साथ, आप जैसे सिपाही के साथ जो सशस्त्र सीमा बल में रह कर अपना योगदान दे रहा है, काबिले तारीफ है। तो एक नगमा हमारी ओर से आपके लिए, क्योंकि आप जैसे जो सिपाही हैं जो ये सोचते हैं कि हमें बस चलते रहना है, रुकना तो कभी सीखा ही
1: जी
0: नहीं है
1: बिल्कुल
0: ना,
1: मैम,
0: तो उनके नाम हमारी ओर से ये नगमा बहुत ही प्यारा है, कर्मा फिल्म का। मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी बेहद पसंद आने वाला है।
1: जी।

0: पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर। और आज का अंक हर बार की तरह बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह, सहस्त्र सीमा बल जिन्हें पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी सम्मानित किया गया और इसके अलावा कई पुरस्कारों से ये अलंकृत हैं। और हम यही कहेंगे कि आप जैसे सिपाहियों से जब हम रूबरू होते हैं तो कहीं ना कहीं मन में ये बात ज़रूर उठती है कि काश हम भी आप जैसे बन पाते, काश हम भी इस प्रकार देश की सेवा कर पाते। पर कहते हैं कि हर व्यक्ति को ईश्वर ने चुना है अपने अपने कार्यों को, कहते हैं ईमानदारी के साथ करने के लिए। तो जिस कार्य के लिए आपको चुना उसको आप बखूबी बहुत प्यार से सम्मान से निभा रहे हैं। एक बात बताइए कि कौन सा ऐसा कार्य था, कौन सी ऐसी बटालियन थी, कौन सा ऐसा रोल था आपका जो आपको लगा कि अगर ये ना मिलता तो शायद कुछ अधूरा रह जाता, कोई कोई ऐसा है?
1: मेरा ये 35 से जो बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, जो कि वहाँ के जो कार्य थे काफ़ी जो है मेरी यादों में घुले मिले हैं।
0: जी जी, तो जब दूसरों से बात करते होंगे, बताते होंगे तो ज़रूर जिक्र करते होंगे, है ना?
1: बिल्कुल जिक्र करते हैं मैम।
0: अच्छा, एक बात बताइए मुझे, इन 20 सालों में बहुत सारे मिशन्स रहे होंगे जिसके आप हिस्सा रहे होंगे, उसके साथ साथ ट्रेनिंग्स भी आपके जो कहते हैं आपकी सर्विसेज में शामिल रही होंगी, तो किस किस तरह से आपको प्रशिक्षित किया गया लगातार जिससे कि आपको स्वावलंबी बनाया जा सके, जिससे कि आप सहस्त्र सीमा बल के लिए कहते हैं ना कि मजबूत, एक मजबूत सिपाही बन सकें, तो कौन कौन सी ऐसी ट्रेनिंग थी जो आपको प्राप्त हुई?
1: जी मैम, मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले मैंने SSV में कमांडो कोर्स किया, उसके बाद जो है NSG ब्लैकेट कमांडो कोर्स में गया, वहाँ पे एक कैप्सूल कोर्स चलता है NSG के अंदर, वो भी किया है। वहाँ पे मैंने PTI कोर्स भी किया और जो है PTI इंस्ट्रक्टर था NSG में, और VIP ड्यूटियाँ करी हैं।
0: वाह क्या बात है, तो निश्चित रूप से आपको बार बार ये महसूस होता होगा ना कि कुछ और नया अर्जित कर लिया, कुछ और नया सीख लिया, कुछ और नया दे दिया, ये नयापन हमेशा रहता होगा।
1: हाँ जी मैम, फौज में हर एक चीज़ जो नई होती है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और ना ही जब तक उम्र है आदमी खालीपन ही रहता है, बस सीखे जाओ सीखे जाओ।
0: वाह क्या बात है। अच्छा एक बात और बताइए कि सहस्त्र सीमा बल में आप अपना योगदान दे रहे हैं और 20 सालों का सफ़र यादगार भी रहा, आगे आने वाले कहते हैं जीवन के लिए भी आपने बहुत कुछ सोचा हुआ होगा, निश्चित रूप से आप ये चाहते होंगे आप और सम्मान अर्जित करें और बड़े बड़े ऑपरेशंस का हिस्सा बने, लेकिन इनके साथ साथ कहते हैं कि व्यक्ति का जीवन में उसका परिवार, उसका पारिवारिक जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो ऐसे में अपने परिवार, सबसे पहले कि सहस्त्र सीमा बल के प्रति जो आपका का कर्तव्य है, देश के प्रति कर्तव्य है, वो तो सर्वोपरि है, लेकिन उसके साथ साथ परिवार, इन दोनों के बीच कैसे भूमिका निभा कर चलते हैं और आपकी अर्धांगिनी का क्या योगदान है? क्योंकि कहते हैं कि हमारा जो स्पाउस होता है, जो हमारी अर्धांगिनी होती है, या जो भी व्यक्ति हमारे जीवन में शामिल है, अगर वो ना हो तो शायद हमारे लिए काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, तो किस तरह से सामंजस्य बैठा पाते हैं आप?
1: मैम ऐसा है कि जो परिवार और देश,

0: कहीं ना कहीं दोनों ही सम्मान लायक हैं, पर मेरे लिए सर्वोपरि पहले मेरा देश है, उसके बाद परिवार है। मैं जब ड्यूटी करता हूँ तो बड़ी निष्ठा से, बड़ी ईमानदारी से अपनी ड्यूटियाँ निभाता हूँ, और जब मैं लीव पर रहता हूँ तो पूरा समय अपने परिवार को देता हूँ। और कहीं ना कहीं मेरे जब परिवार खुशहाल है तो मेरे को भी दिल करता है अच्छे जो देश की सेवा करूं, देश के प्रति समर्पित रहूं।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। अब आप हमें ये बताइए कि परिवार में कौन कौन है। वैसे तो आप अपने आपने बताया अपने भाई बहनों के बारे में, तो ये बताइए कि जब प्रथम बार अपनी अर्धांगिनी से मिले आप, तो उनसे क्या कहा आपने? क्योंकि आप फौज में, और कहीं ना कहीं अर्धांगिनी को बात समझानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि देखो देश पहले है, ऐसे में हो सकता है कि मैं तुमसे बहुत दिनों तक बहुत दूर रहूं। कुछ ऐसा उनके साथ साझा किया? कुछ कोई कहते हैं ना कि उनसे कोई प्रॉमिस लिया?
0: मेरे को मैम समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा पूरा परिवार ही जो है डिफेंस में है, उनके परिवार के भी काफ़ी डिफेंस में है, उनको पहले से पता था। पर फिर भी जो है एक रहती है, तो मैंने शादी से पहले पूछा था कि मैं फौज में हूँ तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उन्होंने पहले जो है बोल दिया मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जो मदर फादर कर देंगे वो मेरे लिए सब ठीक है।
1: अच्छा, ये बताइए कि आप आपके लिए कोई प्रेरणा स्रोत रहे, और आपने किसी से प्रेरणा ली? अब बच्चों पर, जब बच्चों से आप बात करते हैं, बच्चों को किससे कहानियाँ सुनाते होंगे, तो आपके बच्चे आपसे क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं कि हम भी आपकी तरह बनना चाहते हैं?
0: जी मैम, मेरा बड़ा लड़का है जो है वो भी फौज में आने का इच्छुक है, जो कि अब 11वीं क्लास में पढ़ रहा है, तो उसकी बहुत रुचि है, वो NDA की तैयारी के लिए बोलता है और करने के लिए इच्छुक है।
1: वाह, क्या बात है। और हम यही कहेंगे, जिस तरह से आपने बहुत लोगों की नैया पार लगाई अपनी नैया के साथ साथ, वैसे बच्चों की नैया पार भी आप निश्चित रूप से लगाएंगे। और मैं तो ये कहती हूँ कि आपके गांव के जितने भी बच्चे हैं, वो आपको देखकर, ये गांव के और भी जो हमारे फौजी हैं, उनको देखकर वो ज़रूर प्रेरणा प्राप्त करें,
0: बिल्कुल मैम,
1: क्योंकि देश प्रेम से बड़ा प्रेम तो कोई और नहीं। और देश के प्रति अपना सम्मान दर्शाने के लिए शायद फौज से बेहतर कुछ भी नहीं।
0: बिल्कुल मैम, ऐसा नहीं है कि जो फौजी है, कोई भी देश का जहाँ भी जैसे भी है, जैसे FM रेनबो आप भी एक देश की सेवा कर रही हो,
1: जी
0: तो
1: शुक्रिया।
0: ये जो जहाँ भी जो भी है ईमानदारी से कहीं भी देश की सेवा की जा सकती है।
1: बिल्कुल, कहीं से भी देश की सेवा की जा सकती है। इस बात की मिसाल है हमारे लिसनर्स भी, जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं। संदेश हमारे पास आए हैं, यश शिंदे ने मुंबई से संदेश भेजा है, और इन्होंने कहा कि बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा शो हमारा चल रहा है, उसका सारा श्रेय भगिंदर जी आपको जाता है, क्योंकि जो बातें आपने साझा की वो हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत रहीं, और यही कहेंगे कि हमारे लिए एक याद बन गई, क्योंकि आपसे आज मुलाकात हुई, बहुत सारी बातें हुई। हेमंत कुमार यादव ने संदेश भेजा है, लिखते हैं, जय हिंद सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको, यानी कि आपको धन्यवाद यहाँ पे ज्ञापित कर रहे हैं। FM रेनबो को हार्दिक बधाइयाँ यहाँ पर लिख रहे हैं, कृपया हमारी ओर से आदरणीय भागिंदर सिंह जी को सादर जय हिंद अवश्य प्रेषित करें। और 28वीं वाहिनी SSB अंतागढ़ की PIT टीम की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं भेजी गई हैं। देखिए कितना सुखद पल है आपके लिए भी। अच्छा जी, आपके लिए संदेश आया है थाईलैंड से मिस्टर अमोल भवानी का, और इन्होंने भी आपको जय हिंद लिख यहाँ पर आपका धन्यवाद ज्ञापन किया है। संदेश हमारे पास आया है शंकर लोध का, द्वारका सेक्टर 15 ककरोला दिल्ली से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त आपका भी, आपने संदेश भेजा, और आप सभी दोस्तों का जिन्होंने समय निकाला। यहाँ पर एक हमारे पास संदेश आया, यहाँ पर नाम ज़रूर नहीं लिखा गया है, हेलो सर लिखा गया है, लेकिन जो DP है उसे महसूस होता है कि आप भी सेनाओं में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त संदेश भेजने के लिए। भगिंदर सिंह जी, हमारे पास समय यहाँ पर कम है, लेकिन चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन युवाओं को जो फौज में भर्ती होना चाहते हैं, जो सेवाएं देना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि वो देश के प्रति अपने सम्मान को सेनाओं में, सेनाओं से जुड़कर ज्ञापित करें, क्या कहना चाहते हैं आप उन सभी के लिए?
0: अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, कहीं ना
1: जी
0: कहीं

0: देश सेवा केवल एक नौकरी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है
1: जी।
0: और मैं यही कहना चाहूँगा, सभी को अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। नौकरी ही नहीं, कहीं भी देश के किसी भी कोने में जो देश की सेवा करी जाती है ईमानदारी से निष्ठा से, कहीं भी देश की सेवा कर सकते हैं।
1: जी, एक और संदेश हमारे पास आया है सीटी दीपक निगम का, दिल्ली 25th बटालियन से हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं भेज रहे हैं आपको दीपक निगम। तो हम यही चाहेंगे कि आप यूं ही अपना प्यार इस कार्यक्रम के प्रति दर्शाते रहें। और आज मैं बहुत उत्साहित हूं, प्रसन्न हूं संदेश टू सोल्जर्स के इस अंक के माध्यम से। हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह जी, सशस्त्र सीमा बल, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं, जिन्हें पुलिस मेडल फॉर गारंट्री से सम्मानित किया गया, तो हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि आज आपके माध्यम से हमने इतनी सारी बातें आपके माध्यम से सुनी, आपका यात्रा वृत्तांत सुना। और मैं कहती हूँ कि आगे की ये जो यात्रा है और भी ज़्यादा सुखद हो, कि जब अगली बार हम मिलें तो आपसे और भी बहुत सारी बातें हों करने की, कहने की। तो एक गाना अंत में आपके लिए, जैसा कि आपने फरमाइश की थी कि लता मंगेशकर का एक नगमा यहाँ आपके लिए प्ले किया जाए, तो हम आप सभी वीरों के लिए, सभी फौजियों के लिए, हमारे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स हम ये कहेंगे कि उन सभी के लिए है, उन सभी फौजियों के लिए है जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं या सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन वो हमेशा हमारे दिलों में राज कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो आप सभी के लिए ये नगमा, और ख़ास तौर पर ये नगमा भागिंदर जी के लिए हमारी ओर से। तो हम पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं भागिंदर सिंह जी को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद FM रेनबो के स्टूडियोज़ में आने के लिए।
0: थैंक यू मैम।
1: और हम यही चाहते हैं कि आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करें और इस कार्यक्रम को नित्य प्रति सुनते रहें, क्योंकि आप हमारे देश के सैनिकों की हौसला अफजाई इसी कार्यक्रम के माध्यम से कर सकते हैं। बहुत सारे संदेश आने शुरू हो चुके हैं, मैं माफ़ी चाहूँगी, समय यहाँ पर गुजर रहा है। GD राजेंद्र सिंह जी, 25th बटालियन, इन्होंने संदेश भेजा है, हार्दिक शुभकामनाएं भेजी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जोया का मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से संदेश आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया, देखिए ये आपके प्रति प्यार है जो देश से नहीं विदेश से भी बहुत संदेश हम तक पहुंच रहे हैं। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज शायद मुझे कोई इस शो को एंड करने नहीं देगा, क्योंकि संदेश इतने सारे आ रहे हैं। और हमारे पास संदेश है HC/GD बलविंदर सिंह जी का दिल्ली से, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का संदेश भेजने के लिए और हौसला अफजाई करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी भागिंदर सिंह जी।
0: थैंक यू मैम।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது சந்தேஷ் டூ சோல்ஜர்ஸ் டெல்லி அஞ்சல்.